तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, सो कहो टल गुर सेविए, अहनेस सहज सुभाए, दर्शन परसेय गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद जिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे साहो, जिस पास बहिठिया सोही है, सब नांदा विसाहो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा, एहो सागर सोई तरै, जो हर गुण गाए, साधु संगत कै संग वसै, वडभागी पाए, एहो सागर सोई तरै, जो हर गुण गाए, साध संगत कै संग वसै, वडभागी पाए, सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट भई सब लोह मैं सेवक की राखी, रहाओ अगन सागर।

मन चाऊ पया बैरागिया बल राम जियो। संत जना हर मेल हर पाया वन भागिया बल राम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी। संत जना

जे सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होवे। ऐ सतगुरु आ निमक मात्र भी तू मेरे हिरदे विच वसदा है ना, भाव जिन्ना समा अख चमकण नूं लगदा है, तू इन्ना समा भी मेरे हिरदे विच वसदा है ते मेरा हिरदा ठंडा हो जाता है, मेरा तन मन शीतल हो जाता है। ऐ सतगुरु बख्शिश करो, सदा ही मेरे हिरदे विच वसया करो, नाम नाल मेरी झोली भर देवो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, किथे खुशियां किथे खेड़ा जिथे सतगुरु दी नदर होवे। ते सतगुरु दी नदर किथे होंदी है, जिथे सिमरन है, जिन्हां घरां विच नितनेम है, प्रभु दा जाप है, उथे सतगुरु दी नदर होंदी है। छेवें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज, सतगुरां दे समें भाई पला होया है, मां ते पुत्र कखां दी कुली विच गुजारा करदे ने, हथ दी गरीबी है, सवेरे खा लैंदे ने ते शाम दा फिक्र लगा रहिंदा है। पर सतसंगियो, इस मां ने बच्चे नूं सिख्या किहो जी दित्ती है, भी ऐ पुत्र तू मैनू कम तो जान तो पहला कीर्तन सुना के जाया कर, नितनेम सुना के जाया कर, हर रोज कम तो जान तो पहला पल्ला अपनी अम्मा नू नितनेम सुनांदा है ते फिर कीर्तन भी एक घंटा सुना देता है, फिर कम ते जाता है। एक दिन कीर्तन कीता, जदों टुरन लगा ना घरों कम वास्ते, ते अम्मा की तक रही है, पल्ले दे अखां विच हंझू ने, चेहरा भी उतरिया उतरिया लगता है, पुत्र तू ठीक नहीं है, उदास लगता है। अम्मा तू आखदी सी वी जिहड़ा मन ला के कीर्तन करदा है, सुनदा है, बाणी पढ़दा है, जो मंगे उसनू मिल जांदा है, तू आखदी सी ना भई पुत्र तू की मंगदा हुंदा है। हे मेरी अम्मा, मैं हर रोज कीर्तन करके ये अरदास करदा भई सतगुरु असी बड़े गरीब हां, तू बड़ा दूर वसदा है, मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं कि मैं अपनी अम्मा नू लेके तेरे दर्शन कर जावां, किवें तेरे दर्शनां नू तड़फदी रहिंदी है। तू जे किते बख्शिश करे ते गरीबां नू घर आके दर्शन दे जा। भुल्ले दी मां ने सुनिया ते छाती नाल ला लिया, सतगुरु कोई गल नहीं, कोई उलांबा नहीं, असी गरीब हां, रहण वास्ते चंगा मकान नहीं, खाण वास्ते चंगा प्रशादा नहीं, कोई गल नहीं, पर तेरा लख लख वारी शुक्र है, तू मैनू नाम दियां दातां दित्तियां, किहो जिहा पुत्र बख्शिया है, नाम दियां दातां दित्तियां, पुत्र जरूर अपनी भावना विच फर्क हो सकता है, गुरु दियां रहमतां विच कोई फर्क नहीं होता। पल्ला नित कर्म अनुसार कम ते गया है, सारा दिन मेहनत मजदूरी कीती है, आ जदों शाम नूं घर वापस आ रहा है ना, ते रस्ते दे विच पल्ले नूं एक मित्र ने रोक लिया, ओए पल्लिया
जिस गुरु दा कीर्तन तू रोज करदा है आ लागे अपने पिंड विच ओ गुरु आए हुए ने। पल्ले नूं चाह चढ़ गया, गुरु आए हुए ने। नस पिया इस पासे दौड़ के गया, मैनू ही दर्शन देन आए ने। जदों इस पिंड विच पुजा ते आ सामने तख्त ते छेवें सतगुरु हरगोविंद महाराज बैठे ने, ते बहुत सारी संगत दर्शन करन वास्ते खलोती है। लाइन लगी हुई है लंबी, ते विच पल्ला भी जाके खलो गया। की तक रहा है, जिन्हां नूं मालक ने धन दिता है उन्होंने धन दे ढेर लाए पए ने। कोई सुंदर रुमाला रख देंदा है, कोई दुशाला सतगुरु अगे रख देंदा है। पल्ले ने भी अपनी जेब विच हाथ पाया, सत्संगियो जेब दे विच कुछ भी नहीं, निका भी पैसा नहीं, नाले अग्गे नूं नमस्कार करन वास्ते हो ही जांदा है। मन दे विच बड़ा दुख पार आया, सारा दिन मजदूरी ते कीती है पर अज दिहाड़ी नहीं ना मिली। अब मजदूर दा केड़ा जोर होंदा है, बेशक मालक आख देवे भी कल नूं कठे ले ले, अज कोई पैसा नहीं। पलिया किड्डा तड़पदा हुंदा सी गुरु दे दर्शना नूं, अज तेरे भाग जागे ने ते नमस्कार करन वास्ते निका भी पैसा नहीं। अज ते इंज लगदा है जिवें सारी गरीबी अज ही आई होवे। अज पता लगा गरीबी किड्डा डाढा दुख हुंदा है। बड़ा मन बैराग पार आया, नाले नमस्कार करन वास्ते अगे नूं होई जांदा है ते जेब दे विचों इक रुमाल कढ़िया, ते रुमाल दे विच की है, इक गुड़ दी रोड़ी बनी हुई। आ गरीबी दे विच कई बार एहो जे दिन भी आ जांदे ने। गुड़ दी रोड़ी खा लैणी, पानी रज के पी लैणा, रुमाल जेब चों कढ़िया है, नाले अगे हो ही जांदा है मत्था टेकण वास्ते। ओ मेरे सतगुरु दिलां दियां जानण वाले दूरों ही इहदे वल देखी जांदे ने। जदों असीं गुरु घर दी दलीज ते पैर रखदे हां ना, साडे मन दे विच की है गुरु बोलण तों बगैर ही जाण लैंदा है। इहदे मन दे प्यार नूं गुरु दूर बैठे जाण गए देखी जांदे ने। सतगुरु आप अपने आसन तो उठ के अगे नूं आ रहे ने। संगत हैरान होई, किन्ने नमस्कार करन वास्ते खलोते ने ते सतगुरु उठ के टुर पए। इधरों पल्ला मत्था टेकण वास्ते अगे नूं बद रहा है पर नीवी पाई हुई है, सोचां विच डुबिया होया है। सतगुरु गरीब हां, कोई बेटा नहीं लिया। इन्हें सतगुरां ने आके आवाज मारी, लिया वे पलिया तेरिया गंडा मैं खोल देगा। रमाल पकड़िया होया है ना, अज गंडा खोल लिया है। लिया तेरिया गंडा मैं खोल देगा। सतगुरां नूं देखिया ना, हैरान हो गया। सतगुरां ने रमाल इहदे हाथ चों पकड़ लिया, आप गंढ खोली ते एक गुड़ दी रोड़ी कढ़ी ते मुंह दे विच पा लई। ओए पल्लिया तेरे जिन्नी मिठी पेटा ते अज कोई भी नहीं लेके आया। किन्नी मिठी पेटा ले आया। पल्ले ने सतगुरां दे चरण पकड़ ले। सतगुरु मां कोलों तेरी शोभा सुनदा हुंदा सी, तू गरीब नवाज है, मेरी अम्मा गल्लां करदी हुंदी सी, अज ते अखां नाल तक लिया तू ते सची गरीब नवाज है, सची गरीब नवाज है। चरणां नूं पकड़ के हंझुआं नाल धो दिता, दर्शन कर करके रजदा नहीं। सतगुरु हथ जोड़ के पल्ला आख रहा है, जे तुसी हुक्म करो ते मैं नस के जाके अपनी मां नूं भी लै आवां।
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਲੈ ਆਵਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਚੱਲੀਏ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੱਲਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਆ ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੇ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪੱਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਕ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਕ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛਕਾ। ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।

प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावे है सब त्यावे तुझे हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडारना तू आपे दाता पे भुगता जी हम तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै है जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता

तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारी मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी

नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जावुद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जबा कर

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जो याही, सुरसना पावई। सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकट न तिन अरके रहै, हो जो या की एक बार। चौपई को कह चौपई, संबत सत्रह है सहस पणिजय। अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा, तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सीरियस

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे मिनवंत नानक गुर चरण लागे।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। इह वस्त तजी नह जाई।

नित दिवह चढ़ सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामु दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदे साह जिस पास

तो ज्योति ऐसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सह स्तव नैन नर नैन है दोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सह स्तव गंध इव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत स्वभाव सुआरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभ तमनो।

0: दिन रात नानक चावे हो नानक चावे हो
1: नानक चावे हो नानक चावे
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

लकाऊ तती बाउन ताकू लग सिमृत नाम अंदन जाग नद मनोद करी हर सिमरन तिस माया संगन तालकाऊ रोग शोक दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाही।

लाओ। भूली भूली मैं फिरी पादर कह न कोई, पुछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोई।

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ
1: कल कलेसन माहे मिटावो
0: सिमरो जास बिसंबर एक है
1: नाम जपत अगत अनेक है
0: वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर
1: किने राम नाम एक आखर
0: किनका एक जिस जे बसावे
1: ताकि महिमा गणि नावे
0: काकी एक है दरस तुहारो
1: नानक उन संग मोहे उदारो
0: सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम
1: भक्त जना के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जम नसे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे
1: प्रभ के सिमरन आंदन जागे
0: प्रभ के सिमरन भव न व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: सर्व दान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निद
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ
1: प्रभु के सिमरन दर गय मानी
0: प्रभु के सिमरन होई सुभला
1: प्रभु के सिमरन सुफल फला
0: से सिमरै जिन आप सिमराए
1: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा
1: प्रभु के सिमरन उदरै मुचा
0: प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे
1: प्रभु के सिमरन सब किछ सुजै
0: प्रभु के सिमरन नाहि जम त्रासा
1: प्रभु के सिमरन पूरन आसा
0: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम अमृत माए समाए
0: प्रभु जी बसे साध की रसना
1: नानक जन का दास न दसना
0: प्रभु को सिमर से तनवंते
1: प्रभु को सिमर से पतवंते
0: प्रभु को सिमर से जन परवान
1: प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान
0: प्रभु को सिमर से बेमुताजे
1: प्रभु को सिमर सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमर से सुखवासी
1: प्रभु को सिमर सदा विनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगेर वाला
0: प्रभु को सिमर से परोपकारी
1: प्रभु को सिमर दिन सद बलिहारी
0: प्रभु को सिमर से मुख सुहावे
1: प्रभु को सिमर दिन सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमर तिन आत्म जीता
1: प्रभु को सिमर निर्मरिता
0: प्रभु को सिमर दिन अनत घनेरे
1: प्रभु को सिमर बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अन दिन जाग
1: नानक सिमरन पूरे भाग
0: प्रभु के सिमरन कारज पूरे
1: प्रभु के सिमरन कबू न चूरे
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी
0: प्रभु के सिमरन निश्चल आसन
1: प्रभु के सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
0: सिमर से जिन जिन को प्रभु मैया
1: नानक दिन जिन सनी भया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद उपाय
0: हर सिमरन भय सिद्ध गति दाते हर सिमरन धारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सकल लकार।

0: न पाई। जय महाभयान दूत जम दले, जय मुस्कल होवे अत पारी, अनेक पुणे चन करत नहीं तरे,
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे,
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
1: नानक पाव सुख नेरे,
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया,
1: हर का नाम जपत हो चुकिया,
0: लाख करोड़ी बंधन पर है,
1: हर का नाम जपत निस्तर है,
0: अनेक माया रंग तिक नाम जावे,
1: हर का नाम जपत आगावे,
0: जे मार के जाते केला,
1: हर नाम संभव सुहेला,
0: ऐसा नाम मन सदा ते आई है,
1: नानक गुरमुख करम कत पाई है,
0: छूटत नहीं कोट लख बाही,
1: नाम जपत है पार पराही,
0: अनेक बिघन जे आए संघार है,
1: हर का नाम तत्काल उधार,
0: अनेक जोन जन में मर जाव,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: ओ मैला मल कहू न तो है,
1: हर का नाम कोट पाप हो,
0: ऐसा नाम जपो मन रंग,
1: नानक पाई है साध के संग,
0: जे मारे

0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
1: नाम जन को त्रिपद भुगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: नाम जपत का पर न भंग
0: हर का नाम जन की बड़ियाई
1: नाम जन सो पापाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: नाम जपत कुछ नहीं दिए

0: खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
1: अग्न
0: माही होमत प्राण न्योली कर्म करे बहु आसन
1: मार्ग संजम साधन
0: निमख निमख।

0: संग रचे
1: साचो झूठ संग रचे
0: जो छड़ नासो अस्थिर कर्माने
1: जो वंशम दूर पराने
0: छोड़ जाय तिस का श्रम करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तोए
1: कर्तव्य प्रीत बसम संग होए
0: अंधकूप में पतित बिकराल
1: नानक काज रहो परम दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोक पचारा करे दिन रात
0: बाहर पेक अंतर मलमाया
1: चपस नहीं कछु करे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापक लोक स्वान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वान
1: गल पातर कैसे करे आता
0: जाके अंतर बसे प्रभ आप
1: नानक केजन सह समान
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: कर गए ले और निभावे
0: कहाँ बुजारत बुझे डोरा
1: निष्कर ये तो समझे भोरा
0: कहाँ बिसन पद गावे गुंजे
1: जतन करे तो भी सुर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो तू उस गवन
0: करतार करुणा में दीन बेनती करे
1: नानक तुम्हारी कृपा करे।

0: एक वस्तु कारण भी कोट गवावे
1: बिना दे दस भी हले
0: कौ मुंडा कौ का करे
1: जे साकर सियो नाई चारा
0: साको की जय सत नमस्कार
1: जाके मन लागा प्रभु मीठा
0: सरब सोता हूं मन लूटा
1: जी जन अपना हुक्म मनाया
0: सरब तो नानक तिन पाया
1: अगर न साहो अपनी दे रास
0: हाथ पीठ बढ़ते अनंत उल्लास
1: अपने अमान कछु बाहर असले
0: अज्ञानी मन भूत करे
1: अपने प्रतीत आप ही खोवे
0: बाहर उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी वस्तुति सागर राख है
0: सबकी आज्ञा माने माथे
1: उसते चौकन करे निहार
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: अनेक पात माया के हेत
0: सर पर होवे जानने
1: दृ की छाया सिउ रंग लावे
0: हो बिन से हो मन पछतावे
1: जो दी सह सो चल नहार
0: लपट रे होते अंधंधार
1: बटाऊ सिउ जो लावे ने
0: ताको हाथ ना आवे के
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया
0: मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राज वंतन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रात हस्ती असब सत्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पेट हस्ता
1: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: अस्थिर भगत साध की शरण
0: नानक जब जब जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सर्म पर निंदा स्ने
0: मिथ्या असत पर द्रव को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरिया उपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
1: मिथ्या चरण पर भिखार कोतावे
0: मिथ्या मन पर लोभ विभावे
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
0: मिथ्या बास में विकारा
1: बिन बुझे मिथ्या सपे
0: सफल दीन नानक हर हर नाम ले
1: वृति साख की आर जा
0: साथ बिना क्या हो सूचा
1: मिथ्या नाम बिना तन अंध
0: मुखा अवस्था के दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाय
0: नेक बिना जो खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन वृथे सब काम
0: जो कि पन के निरार काम
1: तन तन ते जा जे कट बसे हर नाओ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहत अवर कुछ अवर कमावत जानन हार प्रभु प्रवीण
0: बाहर भेद न काहू भीन
1: अवर उपदेश आप न करे
0: आवत जावत जन्मे मरे
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: जिसकी सीख करे संसार
1: जो तू पाना तिन प्रव जाता
0: नानक कुंजन चरण प्राता
1: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे माने
1: आपे आप अप कर तन मेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत मेरा
1: पाव सन सगल ते रह
0: सब कुछ जाने आत्म की रहते
1: जिस पावे तिस लय ला लाए

सासंगमसंगलीकोत सासंगप्रत्यसुन्यान सासंगसंभोतनवेरा साक्षसंगेकुपरजतना नानक साक्षी सोवा परमायस्मानी साक्षसंसदा परभुलय सासंगमरत्रसुन्या सासंग मनोहर पैरं सासंग अस्थिर मन पावे सासंग नानक प्रभु सुप्रसन्न साधु कै संग महापुनीत साधु कै संग नाभी का पैर सासंग जाने परमानंदा साधु कै संग तरे सवाप नानक सार प्रभु पर आई सार कै संग सदा सुपावे साधु कै संग अजर सहे साधु कै संग महल पहुंचे सार कै संग केवल पार ब्रह्मा नानक साधु कै कुर्बान सार संसार में कुटुंब निस्तारे।

सर्पन निस्तरै साधु के संगत गठिका साध संगत भई हमारी नानक साहब के संजोग जेता सुनिया के ता बख्याने साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा मूछ के मूछी।

जैसे जल में कमल लेप, जैसे सुसर को शोक, जैसे राजन को लागे तुल्कवाल, जो बता को खोदे को चंदन लेप, नानक जी पावक का सह स्वभाव, जैसे मैं न लागे जला, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्मज्ञानी के नाय मान।

ब्रह्मज्ञानिभिस्तुभ्यानभ्य ब्रह्मज्ञानिभिरमृतवर्षिणी ब्रह्मज्ञानिकी निर्मलयुक्ता नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी परोपकार महा ब्रह्मज्ञानी ने तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी सुफल फला नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सर्व संसार ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार ब्रह्मज्ञानी अमृत त्यागत ब्रह्मज्ञानी के घर सदानंद नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी एक संग हिस्सा ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी सर्व कर ब्रह्मज्ञानी की जत ब्रह्मज्ञानी जाने नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सजीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी का सब पर हाथ

मन में प्रीत निरंजन दर्श सात्विक है संत संगेत सत्य जाने अपस्व मंदा मन की बात न मन ते करे नानक कोट मुझे को ऐसा तरस विजन की माया तो होई भिन्न इस प्रश्नों का निर्मल धर्म केवल भगत कीर्तन संग्राच सब ऊपर होवत कृपाल नानक हो वैष्णो परम गत पावे सगल त्याग दुष्ट का संग कर पूजा सगल पार ब्रह्म युग की मत सम होवे मन तन अर्पण बिसन परी।

पात्र को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाव नानक सिस मिले जिसके पितर करूं जिसका नाम सतराम दास दास संतन पाइकी पाया सो दास कर गए परवान इस दास को सब सो जी परे ऐसी जगत नानक राम दास जीवन मुक्त सो पावे सदा अनंत नहीं वियोग कैसा अमृत कैसी भी खाटी कैसा रंग कैसा राजा

ज्योतिर्भाव सोई हो, अंत नहीं कुछ पारा बारा, हुक्म उपजे हुक्म समागे, हुक्म अनेक रंग प्रकार, नानक समय रह

संत के दुखन आर जागटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के हते को रखे न कोए, संत कृपाल कृपा जे करै, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन के दुखन सरब जून पाए, संत के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन तीर्थ सब जाए, संतों की कथाओ को नाही, संत का निंदक मा अताई, संत का निंदक मा हत्यारा, संत का निंदक राज तेही, संत के निंदक को सरब रोग, संत के निंदा दोख में दोख, संत का दोखी सदा अपवित्र, संत के दोखी को डान लागे, संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी जन्मे मरे, संत के दोखी को नाही ठाओ, संत का दोखी अध बीच ते टूटे, संत के दोखी को उद्यान भरमाइए, संत का दोखी अंतर ते थोता, संत के दोखी की जड़ किचना है, संत के दुखी को अवर न राखन है, संत का दुखी इव बिल्लाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, संत का दुखी छुटे अकेला, संत का दुखी धर्म ते रहते, फिरत निंदक का तुर ही पया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत के दुखी की पूजा न आसा, संत के दुख न त्रिष्ट कोई, पया कृत न मिट कोई, सब गट इसके हो कर नहार, रब की उस्तत करो दिन रात, सब कुछ वर्त तिसका किया, अपना खेल आप कर नहार,

जीवन को ऐसे भगवान बाहर न कृष्णा ला के आए मानक के कृष्णा ही हार इसका नाम न कंठ परोए नानक निज न लागे कोई कर कर मेरे सब त्योहार सदा सुहेला कर ले जियो सत्संग बिन से सत्संग मिटाय काम चुकिए हर बिंद हर करके नानक उज्जल मथा सदा सदा हर के गुण गाए से तनवंत कनी संसार सदा सदा जानो ते सुखी

निर्वाण कटिए जमकी खासा नानक सजना लागे दूत सो सन सुवेला नहीं बुलावे सो सेवक को किसते करे अपने कारण में आप सुनाया गुर प्रसाद दत्त पूजिया नानक सो सुखम सोई अस्तु आपन चल आप ही करे आज्ञाकारी कारी सब श्रेष्ठ अनेक जगत रखा पुताप तारण तारे हो ब्रह्मांड आप जपाए का नाम जाप सगल संसार उग्र तिमांत सब के सेवक दूर के सार गुर का सबक जब भय निहाल जिसनों कृपा करे बड़ भागे नानक तिन पुरख को उत्तम करमान सदा सदा बसे हर संग करने हार पछाने सोए जैसा सा तैसा दुष्टाना ओ सुख ज्ञान।

0: मन किया कछु न होए
1: जसो प्राणी नोचे कोए
0: तिसबिन नाही तेरे किच काम
1: घटना न जपे खर नाम
0: रूपवंत होए नाही होए
1: रखी जो सगल कट सोए
0: धनवंता होए क्या को गर्वे
1: जा सब किस का दिया दरवे
0: आज सूरज को कहावे
1: रखी तला बिना कहता वे
0: जे को होए बह दाता
1: किस दिन हार जाने गवा
0: जिस गुर प्रसाद उठे हो रो
1: नानक सोजन सदा रोग
0: जो मंदिर को थामे थम
1: जो गुरका सबद मने असमन
0: जो पाखान नाप चढ़तरे
1: प्राणी गुरचन लगत निस्तरे
0: जो अंधकार दीपक परगास
1: गुर दर्शन देख मन होए विगास
0: जो माओ ध्यान में मार्ग पावे
1: जो साधु संग में जोत
0: रखावे जिन संतन की बात छोड़
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूरख काहे बिलाये
1: पूरब लिखे का लिखा पाइये
0: सुप्रभ देवनहार
1: अवर क्या कुछ से चितार
0: जो किश करे सोई सुखमान
1: मूला काहे करे अजाने
0: कौन वस्त आई तेरे संग
1: लपट रे और अस्नु भी पताए
0: राम नाम जप हृदय माए
1: नानक पसे थी घर जाए
0: जिस वखर तो लें तो आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: तज अभिमान ले मन मोर
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाद के संते संचार
1: अवर क्या कुछ क्या जंजाल
0: दान दान कहे सब होए
1: मुख उजल है दर गैसोए नानक ताके सत बलहारे
0: चरण सो चरण साध के तोय तोय पियो
1: अरब साध को अपना जियो
0: साध की धूर करो इश्नान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा वट पागी पाये
1: साध संग हर कीर्तन गाइए
0: अनेक बिगनते साधु राखे
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: उठ गई संते धराया
1: सरब सुख नानक ने पाया
0: वित्त को जीवालन हार
1: भूखे को देवता धार
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माए
1: पूरब निके का लेना पाए
0: सब किस दिसका करने जो
1: किस बिन दूसर हो न हो
0: जब जन सदा सदा दिन रहनी
1: सबसे उच्च निर्मल करनी
0: हर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सोजन निर्मल किया
0: जाके मन गुर की प्रति
1: जिस जन आवे हर प्रचीत
0: भगत भगत सुनिए ते लोए
1: जाके हृदय एको होए
0: सच करनी सता की रह
1: सच हृदय सतमुख कहते
0: साची दि साचा आकार
1: सच वर्ते साचा

नानक की गोपी प्यार सब निरंतर को सोए गैर गंभीर गहिर जाना कृपा निदान नानक ही मन में अंदाओ जो कर पाया सोई हो इसका मंत्र न जाने हो सरब तो सुनिए करता के तब मैं तकलीफ सर रसत में भोगी नानक से पुरख का ज्ञान तो ना पाया सगल देव हारे अवगाहे सगल करोई अपने सूत जनदास नाम से आगत से जन्म मरे फिर आवे जैसा जनावे तैसा नानक ज्ञान नाना वेद कर एक रंग प्रभ अविनाशी एक अंकार पूर रहो पूरन सब पाए अपनी कीमत आपने पाए जब जब जीवे नानक हर नाम नाम के दारे खंड ब्रह्मंड नाम के दारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के दारे सगल आकार नाम के संग उदय सुन नानक चौथे पद में सो दिन गत पाए पुरख सत केवल प्रधान सत पुरख समाज समाणी मूल सत सत उत्पत जिसे बुझे तिसे सपली विश्वास सत नानक गुरते पाई सत के दिन जाके हिजर नाम जपत का की गत होए आपे जाने अपनी मितगत अवर न भू करत विचार नानक दिन बुझे सिखाया साधु गुर के वचन कारक रहे जाके संग करे संसार जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद।

सेवक को गुर सदा दयाल। गुर बचनी हर नाम उचरै, गुर का सिख विकार से हटै, गुर का सिख बढ़वा की है। नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे, गुर की आज्ञा मन में सहै, हर हर नाम जस त्यागै। ते सेवक के कार्य ग्रास, तिसको हो प्राप्त स्वामी। नानक सो सेवक गुर की मत ले, सो सेवक परमेश्वर की गजाने। अनेक बार

चरण कमल निर्मल हर जड़ कर गौ नाम हर भक्त संत जनाता निर्मल मंत सरब रोग नानक मिट जाए सोदन हर सेवा ते पावे सासु बाबज हर की सरनी रोग मिटाय हर औकत लाए जप नानक दरगह परवान रह दिल तावत आवे खाए जाके हृदय बसै हर सोए सिमर सिमर सरा सुख पाओ भगत हाय आत्म प्रगाप कहो नानक का तुम जो पासी जन्म मर सो का चो काचा आप या चरण गुरुदेव हर हर सिमर प्राण आधार सिमर साथ वेद विचारे मन मन सर नानक पल पाए तू क्या लिख पाए इनते कहो तुम कवन सुनाता इनते कहो कवन चुपता छूटा डम छूट पासारी।

जनम शीतल विद्याए सुनत सहस रहत गत पाव सह सुभ नानक गुण गाओ बिना जाय हम विखैल सास ग्रास नाम समाल सासन पावे सच धना किया सुंदर गय जयकार कहु नानक जाके मस्तक लेख एक सीमा देखो मनाए मंथन जा एक भगवान को पूरन पूर रहो प्रज्ञा एक

0: पापों को कहते होता तमैर गयो कि संक मात तम रसो कम से आपत तम मुखा के सोवत ब्रह्म नानक करने हार न दूजा तब बन मगत को कुछ को गनी तब नरक सुरको को आकार तब कौन चित्र कौन बन बन बाजे नानक आपन रूप आप मिट जा जय दिन मैं कहूँ क्या धोता जय कौन कौन मान कौन अमान जय चौन चंद्र नगर को जय किसे भूत कवन तुम सागर नानक करते का नाय सुमार तब कौन मैं बाप मत सुत भाई जय दिन कितने का नानक अपने व्यापक माया तय कौन है चिंता तय कौन सतह कौन सुन नहारा नानक आपस को आपके पहुँचा अनेक प्रकार खेल संकोच नानक पसरे पासा संत प्रताप उनकी शोभा अनुबनी
1: आपका

0: कहते हैं
1: आपे एक आप विस्तार आपन माने नए समाए आपन सो सब जगत परोए
2: सत नाम सोई जल पाए
1: नानक सगत श्रेष्ठ जनिका दीन दयाल अनाथ को नाथ सो मुआ जिस बनु बिसारे सबसे एक निरंजन राय अंतर बाहर जानु साथ नानक बात सदा बनहार सब ऊपर होवत कृपाल अंतर जामे रहो व्याप जो जो रचो सुखे जो प्यात भगत करे हर के गुण गाए करण हार नानक जो जानिया जिसकी आस न बिरती जाए हुक्म भूत परम पद पाए जाके मन बसिया निरंकार अंदन पूजे गुर के पैर नानक हर प्रभा प्रेमे गुण गाओ सब परमानंद दुर्लभ देता करो उदार प्रांत का यह स्वभाव मिटाए अज्ञान बिन से अंधेरा मानी चे नानक खुल पाओ राम नाम अंतर उतार जिस मंत्र से तुझ साच परी किया
2: दुख दर्द देख हो जाए
1: दरगाह निकट के तुम्हारी नानक बार ना आवे जाए उभरे राखन हार त्याए प्रभ कृपा से प्राणी सुखे नाम जपत मन हो वसु जजन को न पहुंचन हार
2: नानक ताके कार्य पूरा
1: रतन प्रीकत रतन शिष्ट सफल दर्शन सुंदर हर रूप अंतर जामी प्रधान ताके निकट ना मत काल

0: अनिक्रम नाना देखता है। देही मैं इसका विश्राम जायत रज विस्मार नानक सिद्धम सो जी पाए घट घट व्या पया भगवंत सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल जैसी आज्ञा कैसा करें चार कुंड किसे समाए गुर प्रसाद नानक सुख पाओ एक आप डोलना कब डोले
1: सर्व कलाकर खेल खेल
0: मोल न पाए गुणे अमोल
1: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
0: कार हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास
0: नानक तुम
1: संत जना का पेखन सब
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्याप राम संरचन
1: जिन जाता तिसकी एह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: करण करावन हार प्रभु जाने
1: अंतर बसे बार पियो ही
0: नानक दर्शन दे
1: आप सखिया सब सत
0: किस पर ते सगली उत्पत्ति
1: किस पर

0: नित आनंद सुख पाया, नित आनंद सुख पाया,
1: आनंद सुख पाया, नित आनंद सुख पाया,
0: थव सगले सुखी वसाया, थव सगले सुखी वसाया,
1: सुखी बसाया, थव सगले सुखी बसाया,
0: हर की भगत फलदाती, हर की भगत फलदाती,
1: हर की भगत फलदाती, हर की भगत फलदाती,

0: आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी,
1: आयो सुनन पढ़न को बाणी,
0: आयो सुनन पढ़न को बाणी,
1: आओ सुनन पढ़न को बाणी।

आई दिन सगली चिंत मिटाई तुरकी बाणी आई दिन दयाल पुरख मेरवाना दयाल पुरख मेरवाना हर नानक जाच बखाना तुरकी बाणी आई दिन सगली चिंत

0: चरण कमल वासे मेरे चीता, चरण कमल वासे मेरे चीता,
1: चरण कमल वसे मेरे चीता, चरण कमल वसे मेरे चीता।
0: नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास,
1: नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास।
0: विसर नहीं पूरन गुणतास, विसर नहीं पूरन गुणतास,
1: विसर नहीं पूरन गुणतास, विसर नहीं पूरन।
0: तन सोवे लाजित दर्शन करना हम बलिहारी सतगुरु चरना, तन सोवे लाजित
1: दर्शन
0: जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम च तेरे। जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बानी, मंत्र तुम्हारा अमृत बानी। शीतल पुरख दृढ़ सो जाने, शीतल पुरख दृढ़ सो जाने। सच हुक्म तुम्हारा।

निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके हे अपरंपर हर हरे हैप्पी होवन हार हे संत कै सद

तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजा खोल कवार, दर्शन दीजा खोल कवार, तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनिय सुजास तुम्हार, मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो, जय देव नामा बेपुस दामा, जय देव नामा बेपुस दामा।

0: कहे कबीर तुम समरथ दाते, कहे कबीर तुम समरथ दाते। चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ दर्शन दीजै कोल कवार, दर्शन दीजै कोल कवार, दर्शन दीजै कोल कवार, दर्शन। वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया
1: श्री अकाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु वाहिगुरु।

0: निहाल।
1: बोले
2: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी हुण छोटी अरदास हो रही है, महाराज साहब जी के सरूप आ रहे हैं, सारिया संगतां ने इस तरह सत्कार साथ खड़े रहना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

एक बार पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे तान नेवटियां दी ओट सच्चे पिताप वाहिगुरू धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ महाराज आप जी दे हजूर अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जी आप जी ने कृपालता की अमृत वेले दे जागने बख्शिश किए सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर सतगुरु जी अरदास बेनती तुरकी बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना दे महावाक अनुसार अस अज दे दिन सच्चे पातशाह ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीओ महाराज आप जी ने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे किया सतगुरु जीओ बाबा बुढ़ा साहब जी ने ग्रंथी सिंह थाप करके सतगुरु जीओ आप जी ने बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे प्रतख किया सतगुरु जीओ आप जी का पहला प्रकाश पुरब संगत प्रेम भावना श्रद्धा सहित मना रही सन सतगुरु जीओ अमृत वेले प्रभात फेरी प्रारंभ होई संगत वालों श्री सुखमनी साहब जी के जाप अते नाम सिमरन अभ्यास हो सतगुरु जी आप जी के चरणों में बेनती है आप जी करो कृपा आप जी निज स्थाना तो चाले पा करके तखत साहबाना पर प्रकाशमान होके संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शो सतगुरु जी जो जी मिले राजी सो प्रसन्न मिले सुख होवे नाम चितावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सुबर सदा सब वितरित रागर संत मराल करे कंतुहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल जुग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु स्वगल सुख सागर संत मराल करे कंतुहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल जुग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर।

0: पंचे सोहे दर्रा जान पंचा कागुर एक ध्यान तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या दिन सूत धरती होर पर होर तिस्ते भारत लै गमन जोर
1: ਲਿਖਿਆ
0: ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ।

0: नमः संग निकर्मे नमः संग निर्पर्मे नमः संग निनामे नमः संग निकामे
1: नमः संग

0: संपरम पैर
1: नमो योग योगेश्वरम परम सिद्ध
0: नमो राज राज संपरम पिता
1: नमो सत्रपाने नमो स्त्रमाने
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेही अवर्णीय भोगी अभुक्ते
0: नमो योग योगे संपरम जुक्त
1: नमो अनंत नारायण क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत प्रेत देव सुदन
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो शाह शाह नमो भूप भूप
1: नमो दान दान नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नम संसना
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत जंत्र
0: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सचिदानंद सर्वम प्रणासी
0: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
0: अदोदंग गंगो
1: परम परम परमेश्वर मेक्षर प्रोजपाल
0: सर्वदा सिद्ध दाता दयालम
1: अशेदी अपेदी नामक काम
0: समस्त पराजी समस्त सुदाम।

0: नमो सर्व रोगे नमो सर्वोगे
1: नमो सर्व जीतंग नमो सर्व
0: नमो सर्व ज्ञान नमो ब्रह्मदान
1: नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व
0: नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण
1: नमो सर्व रंगे तिरंगी अनंग
0: नमो जीव जीव नमो बीज बीजे
1: जय विजय समस्तंक सिजय
0: कृपालक स्वरूप कुकर्म परनासी
1: सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी
0: चर्प छंदु प्रसाद अमृत कर्मे अमृत
1: अखल जोगे अचल भोगे
0: अचल राज्य अटल साजे
1: अखल तन मंगल अखल तन मंगल।

0: संयुक्त काल पुरख देस
1: नाम सुभरम ने तबूतल कवेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम
1: गंजन दुष्ट भंजन मुकद्दा।

0: चतुर्चकर हर्ता
1: चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने
0: चतुर्चकर वर्ती चतुर्चकर वर्ती
1: चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले
0: चतुर्चक्र पासे चतुर्चकर वासे
1: चतुर्चक्र मानिए चतुर्चक्र।

0: कागज कने गया बजबन
1: के
0: बने के विभूत कने
1: के राजन प्रवाह के तर मन तू जाए
0: अशोक बने की सर्वा बने
1: के शत्रु क्षत्रिय
0: विमंग स्वरूपे की अनुभव अनुपे
1: आदा देव के आप
0: चित्र बहिने की।

0: हरि फुल जी मेर जायक यकीन है,
1: अनेकल तरंग है भेद है बंद है,
0: अजी जुल निवा जाएंगे नी मुल्क राज है,
1: को सर्वपत मुकद विभूत है,
0: प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है,
1: सदैव सर्वरूप है भेदी अनुप है,
0: समस्त पराज है सदा सर्व साज है,
1: समस्त सलाम है सदैव।

0: अलगंज हर
1: अनगन प्रणाम मुन मन सलाम
0: अनखंड
1: अनुभव अनास मुन मन प्रगास
0: गुणगन प्रणाम
1: अनशिज अंग आसन अपंग
0: जल
1: थल अमंड दिस विस अपंड
0: जल थल महंत
2: दिस विस व्यंत

0: जान के सुंदर ही सतिया राज हजारे
1: पवान के पुबत कौन ग्रहणी चार बिचारे
0: श्री पर श्री भगवान बजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे
1: तेरे नांडिया तुम दाम सुसंजन नेम अनेक पिसे के
0: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सवान के पेके
1: बोल अहाच तेचा दास बैस बचार हजार के देके
0: श्री भगवान।

0: साहब श्री सबको शिव नायक जाचक अनेक सो एक देवैया
1: दानव देवेंद्र ने साच पोर पवेक पवान चपेंगे
0: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाक तपेंगे
1: पोर प्रतापन पात जय तुम पापन के पापुंच कपेंगे
0: साच मुख प्रसन्न

0: कौन सो बैद्य के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
1: साच को सुन ले जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो।
0: खाओ ले पान पूछ यह सुर खा लिंग कृत खायो।
1: खाओ लखियो।

0: श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दशमी कपियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपार।

दिसंबर 17 जात सासपुन तीन के ही जा सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आग तेरे

में भाए, हुरमत सुनो अगली उबजो पे दूना खाए, खसमें करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए, वजो गवाए अगला मुहे मुह पाना खाए, जिस दा दिता खावना इस कहिए साबास, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले।

तुम मात पिता हम बारिक तेन, तुमरी कृपा में सुख कनेन। कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा भगवन, सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित तुम ही जानी, सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाउ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निधि आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी, पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई, ते गवाही दे किन डिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी, बोलो जी, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कुटाए, खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म निहारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी, बोलो जी, पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी, प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रक्षा रियायत, देख देख पते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी,

आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी, बाणी ता गाव हो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमानी, पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सारिंग पाणी, कह नानक सदा गावहो एहे सच्ची बाणी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मनै, प्रतख गुरु निस्तारे, सो कहो तल गुर सेवीऐ, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसियाए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीऐ, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहो, जिस पास बैठियां सोही है, सब नांदा वेसा हो, सतना श्री वाहिगुरु साहिब जी, सुही

अंतरजामी पाया कोट बिघन सगले उठना थे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिन

जिस का कारज तिन्ही किया मानस क्या विचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावै सदा करह जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी।

जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गुण गुले। सलोक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रते से ही जे मुख ना मोड़न जिनी संजाता साई, चार चार पौंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई।

पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मदानियां त्यों मथे धर्म राए।

माला रागे के संग पंच बरंगना संग अलाप है अठो नंदना प्रथम राग पहरो वै करही पंच रागनी संग उच्च रही प्रथम भैरवी बिलावली पुन आकी गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगाल मद माधव गाव है ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप है संग रागनी पंचो थाप है गुण करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाश्री ए पंचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चांद कहो सक्यो भारा खो खटो भोरा आनंद गाए अष्टमाल क्योसक संगलाए पुन आयो हिडोल पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देवकरी आई बसंती संदूर सहाई सरस अहिरी लय भार जा संग लाई पंच वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान ओहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र।